जटाने की। 1984 के कल्लू घारे तो बाद जो सिख नौजवानी सिख संघर्ष में कुदी, खाड़कू संघर्ष अंदर कुदी, तो उन्होंने उस संघर्ष अंदर कुदन की बहुत वड्डी कीमत भी अदा करनी पई। 23 जुलाई 1990 एस वाई एल नहर बन मारद हो पानिया का राखा बनिया भाई बलविंदर सिंह जटाना, उन्हें एम एस सीकरी दफ्तर अंदर गोलियां मार के नहर के काम नू रोक ला दिती। 29 अगस्त 1991 रोपड़ के एस एस पी सुमेध सैनी उत्ते बंब धमाका हो गया, हमला हो गया, 3 बॉडीगार्ड उहदे मारे गए, वधी सी इहदी जान बच गई, पीजीआई दाखिल करवाया गया, 16 लाख रुपये का इनाम भाई बलविंदर सिंह जटाने के सिर उत्ते रखिया होया। कहिंदे पीजीआई सुमेध सैनी हस्पताल विच दाखिल है, इहदे लागे बैठा होया गुरमीत पिंकी कैट है जिहड़ा कहिंदे ने कि नकली निहंग अजीत सिंह पूला गुरु बख्शे बाणे दे नाल चेते रखो जो करतूता इन्हें कीतियां ने वो किसे तो लुकियां छिपियां नहीं, बाणे नू लाज लाई वरना निहंग शब्द यह बख्शिया होया बाणा इन्ना पवित्र इन्ना सुचा सी, लोग यह गल कहिंदे सन आए ने निहंग बूहे खोल दियो निसंग, कहिंदे गुरु की लाडलियां फौजां निहंग सिंह आ रहे ने अपने घर के दरवाजे खोल के रखो, जिन्हां घरां उत्ते इन्हां गुरु की लाडलियां फौजां दे प्रशावे पैने ने चेते रखो वह घर स्वर्ग बन जाने ने। पर अजीत पूले का किरदार इदां दा सी कि जिस पासे तो गुजरदा लोग अपने घरां दे दरवाजे बंद कर दे कि इस दुष्ट का प्रशावा इस पापी का प्रशावा जिस घर परिवार उत्ते जिस बच्ची उत्ते पै गया उस परिवार की उस धी की जिंदगी नरक बन जानी है। अजीत पूला आया उन्हें आख्या यारा तेरी यह हालत किने की है, सैनी ने आख्या पूलिया इहदे विच बलविंदर जटाने का दोष है, उन्हें मेरे उत्ते बंब धमाका करवा के मैनू जानो मारन की धमकी दिती है। पूले ने आख्या फिर वेख जे जटाने ने तेरे उत्ते हमला करवाया है ते उहदे परिवार का एक भी मैंबर मैं जीवना नहीं छड्डांगा। सैनी ने अपने मनसूबियां नू कामयाब करन वास्ते अजीत पूले नू मोहरा बना के अगे लाया। उसे रात अजीत पूला खमानो दे लागे वड्डे जटाने कहिंदे ने कि भाई बलविंदर सिंह जटाने नू लभदा है, रात छापेमारी करदा नाका ला के बैठा पर भाई बलविंदर सिंह जटाने का कोई थौ पता नहीं लगता, उहदे घर की कोई शनाख्त नहीं हुंदी। दसण वालिआं ने दसिया कि जिहड़े जटाने नू लभदे हो भाई बलविंदर सिंह जटाने का घर इस खमानो वाले जटाने विच नहीं, वह जटाना पिंड चमकौर साहब दे लागे है उत्थे रहिंदा है। तको जरा अमृत वेला हो चुका है, कहिंदे ने कि अमृत वेले दा पख अमृत वेला सच ना हो वडियाई विचार। इधर गुरुद्वारियां दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश हो रहे ने, इत्थे दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा दिया तुनिया गुर धामा विचो गाइया जा रही ने। उधर अमृत वेले दे 3-4 बजे दे करीब खमानो पिंड दिया माफ करना जटाने पिंड दिया गलिया दी तून छाड़दा निहंगा दा टोला अजीत पूले दी अगवाई दे थले भाई बलविंदर सिंह जटाने दे घर दा खड़का के कुंडा जिवें मौत दा इक तांडव बलविंदर सिंह जटाने दे घर विच आके खेड़दा है। उस वक्त दा नक्शा वडाले दे साथी बिना इंज कर रहे ने।

प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जी, इतनी हाजरी प्रवान करनी क्योंकि दास की अज सेहत भी कुछ ठीक नहीं है, इस वास्ते माफी चाहवांगा। जे बैठ होया पिछे लंबेरा समा तां बैठांगा, नहीं ते माफी मांग लवांगा। सो आप संगतां वड भागे हो, तुसी बहुत लंबेरा समा बैठते हो, तकरीबन 2 घंटे। आपां डेली गुरु की संगत करते हैं, गुरु का जस करते हैं, अपने स्वास सफले करते हैं। सो बहुत वड भागे हो, कोई पूर्वले कर्म तुहाडे चंगे हैं जिन्हां नूं सत्संग दीआं घड़ियां नसीब होईआं हन। वड्डे भाग हन, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीउ। सतसंगत सतगुरु मेरा अमृत करन तुहानू इसे तरह नाम नाल बाणी नाल जोड़ के रखन, दरों करों सिखी सिद्क ते भरोसा नाम दी दात बख्श, यही अरदास है। सो दासरे दा समा समाप्त है, हुण आप संगतां नू भाई हरजोत सिंह जी जख्मी, जिन्हां दा नाम तुसी भली प्रकार जाणू हो, जिन्हां दी विद्या तो तुसी चंगी तरह मुखातब हो, वो आप संगतां नाल गुरु की कीर्ति द्वारा, गुरु के हर जस द्वारा सांझ पाउणगे। आओ उन्हां पासों गुरु की कीर्ति सरवण करिए। दासरियां नूं इत्थे बुलाओ, फते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दें सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहे हैं। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखत कोई न मारे
0: सोमु आज समन बिसारे
1: सच और कहां को जाए
0: सब सिर एक निरंजन राय
1: एक ही जुप जा के सब हाथ
0: अंतर बाहर जान साथ
1: गुण निधान बेअंत पार
0: नानक दास सदा बलहार
1: पूर्ण पूर रहे दयाल
0: सब पर हो वित कृपा
1: अपने कर्तव्य जाने आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: रत पाले जी अनुभव भांत
0: जो जो रचियो सो तिसे त्यात
1: जिस भावे तिसलय मिलाए
0: भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मनिया
0: करन हार नानक एक जाने
1: जान लागा हर एक नाई
0: जिसकी आस न बरती जाए
1: सेवक को सेवा बन आई
0: हुकम बूझ परम पद पाई
1: इससे ऊपर नहीं विचार
0: जाके मन बसया निरंकार
1: बंधन तोड़ भय निर्वैर
0: हर दिन पूजा गुर के पैर
1: हे लोग सुखी है परलोक सुहेले
0: नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साथ संग मिल करो आनंद
0: उनका वो प्र परमानंद
1: राम नाम तस करो विचार
0: दुर्लभ देखा करो उदार
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ
0: राम तरन का यह स्वभाव
1: आठ पैर प्रत्येक होनेरा
0: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
1: उपदेश हृदय बसावो
0: मन इच्छे नानक फल पावो
1: हलत पलत दो लेहो सवार
0: राम नाम अंतर उतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: जिस मन बसे ते साच परीखिया
1: मन तर नाम जपो लिब लाए
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: दरगह निभ खेप तुम्हारी
1: एका टेक रखो मन माहे
0: नानक बहुर न आवे जाहे
1: इससे दूर कहाँ को जाए
0: उबरे राखन हार ते आए
1: निर्भव जपै सकल भव मिटै
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटै हंकार
0: इस जन को कोई न पहुँचन हार
1: सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्ज पूरा
1: मत पूरी अमृत जानकी दृष्ट
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
1: चरण कमल जानकी अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसै सुहोत निहाल
0: ताके निकट न आवत काल
1: अमर भये अमरा पद पाया
0: साध संग नानक हर त्याया श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
0: हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ दीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा
1: सगल समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग नाना दृष्टा है
1: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाध अनहद तहनाद
0: कह न जाइए चरज विस्माद
1: दिन देखा जिस आप दिखाए
0: नानक ते दर सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: घट घट प्याप रहा भगवंत
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: अंतिम पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: संतर माहे
0: चार कुंट दै दिशा समाहे
1: इसके भिन्न नहीं को ठाऊं
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मह देख
0: सस्य सूर न खतरे में एक
1: वाणी प्रभु की सबको बोले
0: आप डोल न कब हूं डोले
1: सर्व कला कर खेल है खेल
0: बोल न पाइये गुण अमोल
1: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत
0: धार रहे हो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद भ्रम का नाश
0: नानक तिन में एको विश्वास
1: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी एह रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मान
0: करन करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: जिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: इस भावे ता करे विसार
0: इस भावे ता एक अंकार
1: अनक कला लखी न जाए
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए दूर
0: आपे आप प्रभुर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूते आप वरतारा
0: सर्व नैन आप खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: आवन जानिक खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कह मत अलिप्त हो रहे
0: जो किस कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जापा वैता लय समाये
1: इससे होई सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कश करा
1: आप ला करतूत आत्मी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: पोत पोते अपन संग राज
1: ताकी गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए तो सो जी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मिलाए लय प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस पर साथ सब जगत कराया
1: जानिया मन का यह सुहाव
0: जन के संगत आवे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

सर्वत्र भेषा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र शोका के सर्वत्र भोका के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देशा के सर्वत्र भेषा के सर्वत्र मान्या सदैव प्रधानिया के सर्वत्र जापिया के

भुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभास युक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनुप है, समस्त पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामित्रपंगी।

0: दृश्य दा, उस अरूप दा, उस गुपत दा खेल है, तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, पर इन्हां लहरां दा पैदा होना, इन्हां लहरां दा मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परले सब परमात्मा दे विच हो रही है, सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नू खोजना नहीं है, खोजना उसनू पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उस दे कोल पैंदा है जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उस दे कोल जाना है, ना उसनू लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है, ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है, वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल सी, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागनता, मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते असी अधे जागे हुए हैं, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आता है, भजन का नहीं। वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं, किसनों रस आता है? नहीं। पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आता है। रसना अधी जागी हुई है, अधी सुती हुई। अखा अधिया जागिया ने, अधिया सुतिया हुई ने। संसार नू वेख रही ने, निरंकार नू नहीं। कन अधे जागे ने, अधे सुते ने। ये जगत नू सुन रहे ने, गुरु नू नहीं सुनते, ना परमात्मा नू सुनते। शरीर संसार नू स्पर्श कर रहा है, निरंकार नू नहीं। जब कोई पूर्ण तौर पर जाग जाता है, सुचेत हो जाता है, तो रसना नू भजन का भी रस आन लग पैंदा। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जाता है। उनू जो कुछ दिखाई देंदा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नू जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जाता है। तो मैं इस तरह जद भी किसी महापुरश नू आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नू पता नहीं होंदा कि वह मिलिया होया है। जिसनों असी भगत संत कह देने, उनू पता है कि उसके हाथ तो भी नेड़े है, उसे हाजिर नाजर है। जब कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नू होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नू दसा। हकीकत यह है, असलियत यह है। और कभी कर्म कांड तो उच्चे उठन की कोशिश करो। और कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मौत। कबीर कहते हैं कि राम नाम दा हीरा लबे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते हैं संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों तो उसके अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ों दी सोना चांदी नहीं आता, समुद्र दी सारी थां दे उते हीरे मोती नहीं आते, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते हैं मैं तलाश कर रहे हैं उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकते ने मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहते ने बाजार नो, आप कहते कोई बाजार ही नहीं है, कितने बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरिया की मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदने दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहते ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर है, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईआं ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल दियां पे। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने। बैराज साहब का पाठ टेप ला लो, असा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होता जा रहा है। सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाना। बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, वो भी मैच कर गया, मशीन ही हो गया। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु से जो ध्यान नहीं है तो जो धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों में बाजार ने उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख का कम शुरू होया। बस सिर्फ हीरे, रतन पन्ने लाल मूंगे नीलम जवाहरात पन्ने जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता या मोटा मांस बिकता है जौहरियां दी दुकाना को। जयपुर का जड़ा जौहरी बाजार है उत्थे हीरियां दी खरीद फरोख्त होंगी उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा ये देश है हीरियां दी मंडी हीरियां दा बाजार किधरे किधरे हर थां ते नहीं हर जगह नहीं है। हर शहर दी सब्जी मंडी जरूर है कपड़ा मार्केट है लोहा मंडी है लकड़ मंडी है हर शहर विच हीरियां दी मंडी नहीं है जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहिंदे जिहड़ा हीरा कोल है वेचना चाहना पर पटन नहीं है बाजार नहीं है तो जिथे गाजरां मूलियां पईआं बिकदियां मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावा बेचण इत मूर्खता होगी इत मूर्खता होगी। हर जगह देते सच की गल नहीं की जा सकती परमात्मा की गल नहीं की जा सकती इतने कोई स्रोता ही नहीं कोई चाहत ही नहीं कोई तड़प ही नहीं उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहिंदे ने कोई मंडी ही नहीं है नहीं पटन। आप कहिंदे ने भ्रमण करदिया करदिया कदी कदाई मंडी मिल जाती है पटन लग जाता बाजार लग जाता। दुनिया का भ्रमण करते करते किसी शहर के सत्संग लग पैंदा तो कबीर कहिंदे खुशी हो जाती है मैनू मंडी लग पई। पर आप कहिंदे ने मेरी खुशी एकदम मायूसी विच बदल जाती है क्यों नहीं पटन नहीं पार खो पटन ते लभ पिया बाजार ते लभ पिया पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखू नहीं ने हीरियां दे समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच भगवान दी कोई समझ नहीं आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु दा कोई बोध नहीं पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच खुदा दी कोई समझ नहीं खुदा दा कोई ज्ञान नहीं। कहिंदे ने पारखू ही कोई नहीं ते जद पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच्छ है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार विच एक सिंह की भी दुकान है वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी तो मैनू कह लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने नहीं विशेष रूप विच ये नौ आउंदे ने नौ रतन हीरा है लाल है पन्ना है मूंगा है नीलम है जवाहर है मोती इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे ये तुसी देखे ने मैं नहीं सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो मैं थानू दुकान पर लै जाना अपनी सारे दिखा देना मेरे को सारे ही हैं असी यही काम करते हैं साडा यही धंधा है। उसकी दुकान ते पुखराज नहीं सी उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया बाकी सारे रतन दिखाए एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहिंदे ने हीरा लेके मैं बैठ गया कोई पारखू ही नहीं है किसी नूं समझ ही नहीं नहीं पटन नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया आ रहे ने लोकी मस्जिदां खुदा दी कोई समझ नहीं है आ रहे ने लोकी गुरुद्वारियां च गुरु दा कोई बोध नहीं है बड़ी भीड़ जा रही है मंदरां दे च भगवान दा कोई ज्ञान नहीं कुछ भी समझ नहीं नहीं पटन नहीं पारखो। आप कहिंदे ने कदी कदाई भ्रमण करदिया करदिया किसे बाजार विच पारखू भी मिल जाते समझ पता है, सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही है, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही। और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने, वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके, ये कितनी दया है, ये कितना क प्रेम है, ये दृष्टि विच कितनी समानता है, ये किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है। इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना क धार्मिक है। और किस तरह नापोगे? चानना सारे का सारा सूरज का है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही को, गुण तो सारे उस दे ने। रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे छो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहिंदे भरमन करदिया करदिया खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया। उन्हें समझ आया समदृष्टि किसनों कहते, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार विच, उन्हें परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता है, चलो पारखो मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है, पर जब कोई संगीतकार किसी संगीतकार नू दाद देंदा है तो उसनों जिहड़ी रूहानी खुशी आती है दूजियां दे सिर हिलाण नाल नहीं, जिन्हां नू कख नहीं पता संगीत है कि वास्तविक राग है कि। कुछ बोलां नू कुछ अखरां नू तरतीब दे दईए तो कविता का जन्म हो जाता है, आवाज़ नू तरतीब दे दईए तो संगीत का जन्म हो जाता है, और जिंदगी दे हर कर्म नू तरतीब दे दईए तो भगती का जन्म हो जाता है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सारा तरतीब दे चल गया, सारा मर्यादा दे चल गया। आवाज़ नू मर्यादा विच करना साधना की लोड़ है, बोलां नू तरतीब विच करना सीखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है। जिंदगी दे हर कर्म नू तरतीब विच करना अभ्यास करना पैंदा, उंज नहीं होंदा। तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जाती है जब कदी कोई पारखू भी लभ पैंदा है, गल नू समझदा है, पता है। पर कबीर कहिंदे ने खुशी मेरी फिर निराशा दे बदल दी, क्यों? पारखू है, ग्राहक नहीं है, लेना नहीं चाहता, समझते है उस नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक, वो ग्राहक नहीं है। पारखू तो है, समझते है गल दी, पर इसके अंदर ग्राहकता नहीं है, तड़प नहीं है, खिच नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है। आप कहिंदे ने कदी कदाई किसे सत्संग किसे शहर विच किसे मंडी देखदा पारखू भी लभ पे ग्राहक भी लभ पे लेना चाहता है, उदिंदर लैण की भी तड़प है, उदिंदर लैण की भी खिच है, वो लेना भी चाहता है, वो प्राप्त भी करना चाहता है। तो भगत जी कहिंदे ने बहुत मन खुश होंदा है कि ग्राहक भी लभ पे, पर आप कहिंदे ने मेरा दुख अपनी थां ते ग्राहक ते लभे पर मुल नहीं देना चाहता, मुफ्त दे च मंगदा। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, कहिंदे जिहड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए वो कोई खास नहीं आउंदी। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਟੀਆਂ ਪੱਥਰੋਂ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਖ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੋ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉਂ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਜਵਲ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ। ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਅੰਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ, ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ, ਅੰਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਮਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੈਸੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਉਸੇ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ। ਬਸ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਨੰਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। पावन अस्थान जिथे मैं देखदा वाकई छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है। संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां दी पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 Street। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 22.99 ਦਾ, BC ਹੌਟ ਹਾਊਸ ਟੋਮੇਟੋਜ਼ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਲਵੋ 98 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ।
4: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
5: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਫ੍ਰੀ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
6: 3 locations ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
4: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
7: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
8: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
7: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
8: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
7: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी आप ले ओ तुम कथा सुधारी कहाँ लगे एहो कीट बखाने महिमा तो

गुरु रूप सत्संग जीओ फते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप विच कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं कीती जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है। फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे होया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देता। ऐसा मनुख ऐसा त्यास कीता जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी, परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है जानना है इह ते रस्ते दा वेखणा है। इस तरह दे जानकार जानन वाले रस्ते नूं समझण वाले इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, उदा कोई थां टिकाणा नहीं, उदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, उदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहते बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप

सागर दिच पर सागर ही है, कबीर राम दिच खो के राम ही हो गए, नाम देव प्रभु दिच खो के प्रभु ही हो गए, ऐसा भक्ति कर देंदी है। भक्ति दिच श्रद्धा दी लेस ते होंदी है, प्रेम दी मात्रा ते होंदी है, लेकिन फिर भी भक्ति शिखर ते। हुण मैं अर्ज करां, स्नेह दिच सारे आउंदे ने, हजारां च कोई एक कद मनुख प्रेम तक पहुंचदा है, लखां दिच किधर एक कद दिच श्रद्धा आउंदी है, चक्कर च ना पैना श्रद्धा। गुरु ग्रंथ साहब दे सामने लोकी गप्पां मारी जांदे होंदे ने, बड़ियां वाहियात गल्लां भी करी जांदे होंदे ने, हैरानगी होंदी है की श्रद्धा है। एक दूजे दीआं पग्गां लैंदियां भी मैं देखियां ना, कुछ भी नहीं। श्रद्धा एक ऐसी अवस्था बना देंदी है, वो मनुख बेद भी नहीं कर सकता, कतई ही नहीं करेगा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, इकबाल कहिंदा है अदब तो पहली गल है, पर श्रद्धालु करदा है। लेकिन फिर जब ये भक्ति दे कदम रखता है, तो भक्ति ऐसा है जैसे बूंद ने छलांग मारी है, सागर हो गई है। इस भक्ति की रूपरेखा जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चित्री हुई है, भगतों ने पेश की है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखी है, और कलगीधर पातशाह जो इसका खुलासा करते हैं, मैं बाकी दे तीन दिनों विच तुहाडे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। हुण इत्थे समाप्ति करिए, तुहानू लेट ना करिए, बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल तुसीं सरवण कीता, साहिब रहमत करन बख्शिश करन, इसे जीवन विच असी भगती तक पहुंच सकीए। जितने चिर तक मनुख भगवान नहीं होया, जमदा रहेगा मरदा रहेगा, केवल भगवान ना जमदा ना मरदा, बाकी सब जमदे मरदे। भरम भूले नर करच कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। जन्म मरण तो नारायण रहत है, ते जन्म मरण तो रहत होना है तो नारायण ते होना पड़ेगा, इस तो बिना नहीं है, इस तो बिना यह चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। साहिब रहमत करन, इस दे बाकी पहलू जड़े धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगमी बाणी ने वर्णन किए ने, थोड़े सामने फिर रखांगे। हुण गुरु के कीर्तनिया पासो एक महान शब्द सरवण करो आप, आनंद साहब का पाठ से समाप्ति फतेह प्रवान करने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musiala, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट